अकाल मूरत अजुनी सै पहं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक खुशी पी सच कवन वधाई कह सको बेअंत गुणीता

0: उससे लिखी है, श्री वाहगुरु जी की आज्ञा है, सरबत संगत ऊपर मेरा हुक्म है, गनी खां नबी खां ये जो है से मेरे फरजंदा से बैज हैं। ये दरते गनी खां नबी खां मेरे पुत्रां तो प्यारे जे। अगली गल की मेरे कम आए हैं, इन्हें मेरी सेवा की थी। अगली तुकसी जो सिख इनकी खिदमत अंदर रुजू रहेग, रुजू दा अर्थ है जेड़ा इन्हां वल ध्यान देगा। गनी खां नबी खां ये जो हैं से मेरे फरजंदा से बैज हैं, मेरे कम आए हैं, जो सिख इनकी खिदमत अंदर रुजू रहेग। ते तीन असीसां दित्तियां सो निहाल होग, जीवन दी बाजी जित के जाएगा, उस ऊपर मेरी कृपा होग। ते तीजा शब्द क्या, उस ऊपर मेरा हाथ होग, ए मेरे हैं, जो इन्हां की सेवा करेगा सो मेरी करेगा। संमत 17 तो बाद गुरु गोविंद सिंह सच्चे पिता ने हुक्म दिता, कहन लगे लायो गनी खां खालसा मेरा पुत्र है, पर मैं तेनू लीका मार के लिख दिता है, तू मेरा लीक पुत्र है, लिख के दिता है, मेरे बच्चो हुक्मनामा ले जाओ, तुसी मेरे पुत्र हो। कहने जदो कहने पिछले पैरी तुरे ने, दिल नहीं करता पिच करिए, पिछले खुरी तुरदे पए ने, ते साहब उतर के ना उतो पलंग तो नाले अगे तुरदे ने, नाले खां कहंदे ने पुत्र निहाल, दूजी वारी शब्द क्या बेटा निहाल, ते तीजा शब्द क्या मेरे पुत्रो तुहाडी सेवा सफल। तीन शब्द कह दोनों भरा घर आ गए, ते घर कहंदे ने ओ बच्ची जिन्हें गुरु गोबिंद सिंह दे दर्शन किए सन, कुछ घुट के बापू नूं छाती नाल मिली, कहन लगी अब्बा किन्ने भागां वाले असी हो गए, साडे घर विच गुरु गोबिंद सिंह आ गए ना, बापू पता नहीं उस दिन दी रात नींद नहीं पैंदी पई, गुरु दा चेहरा अखां दे सामने वे, उस दे बचन मैनू टुंबदे पए ने। कहन लगे धीए अज तक तां तू दर्शन कीते श्रद्धालु बन के, अज तू गुरु गोबिंद सिंह ने तेनू बड़ा वड्डा रुतबा दे दिता। कहन लगी किवें, डॉक्टर बलबीर सिंह लिखते ने नमी नजर एक ग्रंथ ओहदे विच, कहन लगे धीए अज तू एक पोती बन गई है। कहन लगी मैं पोती किदी, कहन लगे बेटा असी गए साहब दा मंजा रखिया, कहन लगे गनी खां नबी खां असी मसंदा नूं मंजियां उत्ते बहन लई बनाया सी, पर इन्ने कु बह गए उन्हां दा जीवन ही बह गया। ध्यान देना, असी उन्हां नूं मंजियां ते बिठाया और जीवन वलों बह गए, असी तुहानूं मंजी ते बिठाया नहीं, असी तुहानूं मंजा चुकन दी ताकत दित्ती। ध्यान रखना गुरु गोबिंद सिंह दा तुसी मंजा चुकिया। कहन लगे धीए जदों तुर लगे एक कीमती दात दित्ती, कहन लगी बापू कोई हीरा कोई रुपये, कहन लगे नहीं धीए एक कागज विच लिख दिता गनी खां नबी खां मेरे पुत्र ने, ते कहन लगी बापू नच के गले ना ला के ओदे पुत्र तां बड़े होणगे पर पोती तां केवल मैं इकली ओदी, बाकी ओदियां धीआं जरूर ने जिन्हां अमृत पान कीता, जे तुसी ओदे पुत्र ते मैं ओदी धी आ। उथे फिर उन्हें चार गल्लां कहियां, मैं पोती मैं पोती मैं आप दार मोती, मैं सिफती विच परोती, मैं पोती मैं पोती। उथे उन्हां ने हुक्मनामा रखिया, मेरे साहब हेरा पिंड तो आलमगीर आए, इथे एक सिख मिलिया, साहब नूं जदों देखिया बैठिया ते सामने आया, सोचदा कौन है जिहड़ा बैठा है, ते जदों कोल आया ते ओहदियां भुब्बां निकल गईयां, कौन सी, भाई साहब भाई मनी सिंह दा सक्का भरा भाई नगाईया, ते ओहदा पुत्तर, देख के झलिया ना गया, कहन लगा दाता जी मंजे ते। साहब ने कहा घोड़ा नहीं, उतर के कहंदा आ लो घोड़ा प्रवान करो, मैं आप ही पैदल चला जावांगा। उत्थों साहब ने घोड़ा लिया, आओ प्यारियो उस कलगी वाले दी दास्तान जे सुन के दिलों तैयार कर दियो, तां अखरी नहीं कह देना सुन लेना सिखी, ए नहीं सुन के कमाना ही सिखी, जे वाकई गुरु गोबिंद सिंह दे बच्चे बनदे हो ना, आ बस अद्धे घंटे तो बाद तुसी उस सन विच प्रवेश कर लगे हो जिथे 300 साल पहला साहब ने अमृत दी दात दित्ती। ते वेख के भाई गुरदास दूजे ने कहा सी, कहन लगे गुरसिमर मनाई कालका खंडे की बेला, गुरसंगत कीनी खालसा मन मुखी दुखेला, पीवो कौल खंडे तार होए जन्म सहेला। अखीर विच कहा कि वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला, अज तो पहला तक के कहा कि वह प्रगट्यो मर्द अगंबड़ा वरियाम अकेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। कि आपा उस गुरु दे पुत्र नहीं बनना चाहते। आओ मैं फिर अर्ज करा, केवल इस टूर दा एक विमान रह गया ऐतवार दा तुहाडी हाजरी भर ली। मैं तरला लैके तुहाडे अगे झोली फैला के गल कहना, ध्यान रखियो जिहड़ी दास्तान सुनाई है जे तुहाडे अंदर दर्द है ना, एक बेनती मान लो, जो कहोगे तुहाडे चरण भी चुम लांगे, अकाल तख्त दे हुक्म नूं मन लो। बेनती है थले बह के प्रसाद नहीं असीं सक सकदे, कदी तको खलोना गुरसिखां वल, सिर्फ बेनती है। मैनूं आस है कि तुसी मेरी बेनती नूं मेरे अंदर नूं ठुकरायो ना, गुरु कृपा करे आपां अमृत दी दात लै साहिब दे चरणां नाल जुड़ जाइए। ऐतवार दे दीवान विच छोटे साहिबजादियां दी शहीदी होर भी साहिब दीआं विचारां करांगे जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा बुढ़ा जी एक ऐसी महान शख्सियत, ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष ने जिन्हां दा बदल सानू होर किते कोई नजर आउंदा नहीं। बाबा बुढ़ा जी एक कुतबी सितारे दी तरह ने, जदों भी सिक्खी दा बेड़ा जां संगतां किते डोलन लगियां ते बाबे बुढ़े ने सेध बख्श के उन्हां संगतां नूं गुरु दे चरणां नाल जोड़ दिता। बाबा बुढ़ा अपने जीवन विच उन्हां ने अठ गुरु साहिबाना दे दर्शन इन्हां नेत्रां नाल कीते ने। पंज गुरु साहिबाना नूं उन्हां ने गुरगद्दी दा तिलक भी दिता है। ध्यान दिया जे गुरु नानक साहिब तो लैके गुरु हरगोबिंद साहिब तक उन्हां ने गुरु जोत विच गुरु शरीर दे दर्शन कीते। गुरु अंगद साहिब तो लैके गुरु हरगोबिंद साहिब तक उन्हां ने गुरियाई दा तिलक दिता। ते जदों बाबा जी दा अंतला समा आया उस वक्त गुरु हर राय साहिब ते गुरु तेग बहादुर भी शरीरक तौर ते मौजूद सन। जोत बाद विच अठ गुरु साहिबाना दे दीदार उन्हां ने पाए। बाबा बुढ़ा जी दा जन्म इन्हां दा प्रकाश 22 अक्तूबर ते 1506 पिंड कथू नंगल भाई सुगा रंधावा माता गोरां दी कुख विचों होया। बाबा बुढ़ा जी दी उम्र जदों अजे करीब 12 साल दी सी, 1518 गुरु नानक साहिब जी दे इन्हू दीदार होए ने। 12 साल दी उम्र है। भाई साहब भाई मनी सिंह ने जो उस वक्त लिखे, मैं उन्हां दी लिखत मुताबक इन्हां दा जीवन आरंभ कर लगा। कहन लगे 12 साल दी उम्र विच इस दा नाम पूरा सी भाई बूढ़ा। 12 साल दी उम्र विच बाबा जी मझां पहचारदे सन ते गुरु नानक साहिब ते भाई मरदाना जी इन्हां नूं मिले ने। कहिंदे ने पता नहीं की पूर्वले भाग जागे, बाबा बुढ़ा जी ने 12 साल दी उम्र विच गुरु नानक जी दे दर्शन पाए। आप जी ने साहिब दे चरणां विच नमस्कार कीती, मत्था टेकिया ते उस वक्त सतगुरु के बचन सुन के गुरु की बाणी सुन के दुध लिया के भी भेट कीता ते चरण पकड़ के कहा, बाबा एक कृपा कर, तेरे चेहरे नूं दर्शन कीतिया सुख मिलिया, तेरे बचन सुनिया अंदर नूं सकून मिलिया, कोई एहो जिहा शब्द एहो जिहा बचन मैनूं सुना दे, मेरा जन्म मरण कटिया जाए। कहिंदे ने उस वक्त मेरे गुरु नानक साहिब जी दी नजर ने परखिया ते कहन लगे, पुत्र अजे तां उम्र तेरी खाण पीण दी है, अजे उम्र तां तेरी हसन खेडन दी है, तैनूं किवें इह सोच पै गई कि जन्म मरण कटिया जाए, अजे तां जवानी बुढ़ेपा आउणा। ते 12 साल दी उम्र विच भाई बूढ़े दा उत्तर सी, बाबा मौत दा कोई पता नहीं हूं, इन्हें जवानी आउण तो पहले बूढ़े नूं लै जाणा, मौत दा कोई भरोसा नहीं। भाई मनी सिंह लिखदे ने हजूर ने फिर कहा, कहन लगे, बेटा एक तां तू बड़ी रमज भरी बात कीती, जन्म मरण कटो, तैनू किवें पता लग गया कि मौत जिहड़ी है जवानी विच भी आ सकती है, बचपन विच भी आ सकती है। ते उस वक्त भाई बूढ़े ने बचन सुनाया, कहन लगा, बाबा एक साल पहला दी गल है, अपने बापू नाल खेतां विच गया वां, जिमीदारा करने हां, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਫਸਲ ਅਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਡੱਡਰੀ ਅੱਧੀ ਕੱਚੀ ਤੇ ਅੱਗੀ ਅੱਧੀ ਪੱਕੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਫਸਲ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜੰਮਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਵੀ ਡੱਡਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਦਣ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਬੁੜਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਡੱਡਰੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੌਤ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬਲਵਾਨ ਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੱਚੀ ਫਸਲ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡੱਡਰਿਆਂ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁਢੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੌਤ ਅਵਸ਼ ਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦਣ ਦਾ ਸਮਝਣਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬੂੜੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੁੱਟ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਏ, ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਨਾ। 1500 ਤੇ 1800 ਸਨ ਤੋਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਮਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ, 1518 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1631 ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੀਤ ਹੀ ਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। 113 ਸਾਲ ਇੱਕ ਗਲਵਕੜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬੰਨਿਆ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੋਧੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿੰਡ ਬੰਨਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੋਧੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਾਤਿਆ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਸਾਵਾਂਗਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਈਆਂ ਨਾਨਕਪੁਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੋਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹਦੀ ਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਰਤਾਰ ਦੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਨਾਨਕ ਕਿਹਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਤਾਰ ਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾਨਕ ਕਰਤਾਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਨਾਨਕਪੁਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਵਸੇਗਾ ਉਸ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਦਾਤ ਮੈਂ ਲਈਏ, ਪਿੰਡ ਵਸਾ ਤੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰਾ। ਇੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਸਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਏ। ਖੱਦਰ ਦਾ ਪਰਨਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਖੱਦਰ ਦੀ ਚਾਦਰ ਮੋਢੇ ਤੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਮੋਟਾ ਖੱਦਰ ਦਾ ਪਰਨਾ। ਕਦੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਮੰਜੀ ਅਲਾਣੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹਲ ਵਾਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ ਸ਼ਕਲ ਉਤਾਰਾ, ਪੈਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ, ਮੰਜੀ ਬੈਠ ਕੀਆ ਅਵਤਾਰਾ, ਸੋਦਰ ਆਰਤੀ ਗਾਵੀਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਉਚਾਰਾ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਰਮਦਾਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਰਮਦਾਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਥੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਥਾਂ ਵਰਸੀ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਤਣ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰਗੱਦੀ ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਏ, ਤੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਬਚਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਂਭੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਾਨਕਾਂ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟਾ ਪਕੜਿਆ, ਲੰਮਾ ਚੋਗਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ, ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਰੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਲਿਖਦਾ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਾਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ, ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ, ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਾ ਮੁੜਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਮਜੇ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹੀਰੇ ਦੇਖੇ ਨਾ ਮੋਤੀ ਤੱਕੇ, ਬਸ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੁਕ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਟਾ ਉਘਾਰਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੇ ਜੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਡਾਂਗ ਵੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੁੱਢਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਦੌਲਤ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ, तू अजे भी पिछे तुरिया हुन्ना ते भाई बुढ़े दा अगो उत्तर सी दात्या जिन्ना लोकां दे घर ने घरां वाले तो अपने घरां नू चले गए मेरा घर तो उदण दे मुक गया सी जिदण दा तू गुलवकड़ी विच लै के प्यार दिता है घरां वाले घरां नू चले गए बुढ़े दा ते घर ही गुरु नानक दस तेनू छड़ के किहड़े पासे जाऊं जदों इन्ने शब्द कहे ना सतगुरु ने बुढ़े नू फिर छाती न लाया कहन लगा दात्या तेरे तो विछड़ के नहीं मैं रह सकदा उत्थे जिहड़ी पंक्ति मेरे

तोहं पातिक बिना सह गुर अमरदास परसिय सिद्ध साधक आशा सह गुर अमरदास परसिय ध्यान लइय पौ मुकह गुर अमरदास परसिय अपौ लभै गौ चुकै एक बिन दुगण जो तो रहै जा सुमंत्र मानवैल है जाल पाप दार्थ इतड़े गुर अमरदास डिठ मिले कन हर बूंद बसोरू मावल कुसुम बसंत गणंत नयावै रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र त्यान ज्ञान सतगुर कै कब जन पल उन्हें सो गावै

पावन पवित्र हाजूरी अंदर शोभाए मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों हजूर दी इलाही बाणी दा कीर्तन आप जी ने बड़े प्यार दे नाल सरवण कीता है। आओ आज जो इस स्थान वल्लों होले महल्ले दा पर्व मनाया जा रहा है इस दे पिछोकड़ इतिहास और इस त्योहार ने सिखां दे अंदर की नवा जोश भर दिता इस दी विचार गुरु ग्रंथ साहिब जी दी कृपा और आप साध संगत दी आशीष नाल होनी है। सतगुरु कृपा करके अंदर दा टिकाओ बख्श आप ही इस इतिहास और बाणी दी विचार करा लैन। विचार आरंभन तो पहला गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हिंदुस्तान दी धरती उपर कुछ त्योहार ऐसे मनाए जांदे ने जेड़े खास खास रुत्तां दे नाल संबंधित ने, जिवें कि इन्हां दिनां दे अंदर बसंत नूं भी बड़े लोक चाह मलार दे नाल मनांदे ने। ते बसंत आउण दे नाल जिथे पाला सर्दी घटदी है, ना ज्यादा गर्मी है, ना ज्यादा सर्दी पैंदी है, ते हर पासे चार चुफेरे फुल्लां दी महक फुल खिड़े ने, ते जिमीदारां ने खेतां विच जिथे भी फसल बीजी सरों दी इस तरह मानो जिवें कि पीली चादर ने सारी धरती नूं ढक लिया होवे। इस बसंत दी रुत दे विच ही रुखां नूं पत झड़ तों बाद उस परमेश्वर दी दया नाल नवें पत्तियां दी दात मिलदी है। ते गुरु नानक साहिब जी ने अपनी बाणी विच बड़ा प्यारा बचन किया है। कह लगे बसंत दी रुत विच हर एक मनुख प्रसन्न है, जीव जंतु खुश है, धरती दी बनस्पति मौल गई। पर गुरुदेव किन्ने ने याद रखी असल विच मनुख लई ओ ही रुत चंगी है, बसंत ओ दे लई जिदे हिरदे विच परमेश्वर दा नाम टिक गया है, जिस दे हिरदे विच गुरु की बख्शी हुई बाणी दा निवास हो गया है, ते जिस मनुख दे हिरदे विच परमेश्वर गुरु निरंकार दी कृपा नहीं टिकी ओ बसंत दी रुत विच सारी दुनिया खुश है। ओ बसंत विच भी इसे तरह तुरिया फिरदा है जिवें किसे ने अंदर नूं अग ला दित्ती होवे। सतगुरु ने बचन कीता कहन लगे नानक तिन्ना बसंत है। गुरु नानक साहिब जी दे बचन ने किन्ने ने बसंत ओना लईए जिन घर वसिया कंत। कंत दा अर्थ है मालक पति। जिन्हां दे हिरदे विच घर विच मेरा वाहिगुरु वाहिगुरु परमेश्वर सतगुरु वस गए नानक तिन्ना बसंत है। जिन घर वसिया कंत जिनके कंत दिशा पुरी। ते जिन्हां दे हिरदे विच वाहिगुरु नहीं से एनस फिरे जलंत। ओ दिन रात बसंत दी रुत विच भी सड़दे पए। इसे तरह रुतां नाल संबंधित आ होली दा इक त्योहार है। क्योंकि आपां भावें गल होले महल्ले दी करनी है पर सानू पिछोकड़ विच वचना पएगा होली दा की भाव सी, होला महल्ला क्यों आरंभ होया। जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी पढ़ने आ ते हिंदुस्तान दे इतिहास वल झाती मारने आ, मुद्दतां पहला हिंदुस्तान दी धरती ते हरनाक्ष दे घर दे अंदर प्रहलाद पैदा हुए।

पीर दी गल कीती, पूज लगै पीर आखिया सब मिलै संसार, नाउ सदाए अपना होवै सिद्ध समार, सारे लोग ओदी जय जयकार करन। पर प्यारियो जे साई दे दर ते प्रवान नहीं ते उस पीर नू की करांगे। पूज लगै पीर आखिया सब मिलै संसार, नाउ सदाए अपना होवै सिद्ध समार, जा पत लेखै ना पवै सबा पूज खुआर। जेड़ी पूजा करांदे रहे सारी खुआरी पल्ले पैगी। ते जेड़ी मैं बेनती कर रहा सा फिर अपने विषय ते आवा, हुक्म किए मन भाम दे। ते बाबा नानक जी कहिंदे ने केड़े हुक्म कीते, जे जुग चारे आर जा होर दसूनी कोए, नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए, इथे विरोधी भी कोई ना होवे, चंगा नौ रखाए कह जस कीरत जग ले। पर गुरमुखो जे तिस नदर ना आवई तां वात ना पुछे के महाराज इथे ते बादशाह है। कहन लगे उथे कीटा अंदर कीट कर दोषी, दोष तरे इथे बादशाह है, पर उथे कीड़िया भी छोटा कीड़ा, हजूर बख्शिश कर रहे ने, जेड़े तू कर्म करना पे मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना, हुक्म किए मन भाम दे, रा पीड़ै अगै जावना, नंगा दोजक चालिया ता दिशा खरा डरावना। सतगुरु कहिंदे ने प्यारिया कर अवगण पछोतावना, कत्तक कर्म कमावने दोष ना काउ जोग। प्यारियो हुण असी कई बारी सोचने हैं कि कर्म भी ता परमात्मा करांदा पिया है, ये बड़ा एक गुंजलदार मसला है। स्याणे लोग गुरमत ने गल कही है कि असी कर्म करन दे विच स्वतंत्र हां पर भोगन दे विच असी परतंत्र हां। इत्थे मैं एक उदाहरण देनी चाहांगा होर सानू समझ पै जाए। वेखो दावा नहीं, मत समझो कथा भी जो विचार कह रहे हैं आखरी मेरा फैसला है, नहीं, ये सागर है, असी एक निके निके लून दियां पुतलियां सागर दा अंत की पा लेंगे, बिल्कुल नहीं। ये सम्राट गुरु दा किसे ने अंत नहीं पाना। यही गल धन गुरु अर्जुन साहब कृपालू जी ने कही सी। मैं इत्थे दिल्ली एक बारी बेनती करके गया सा, अज चार पन्निया की कोई किताब लिखदा है, पैंफलेट कोई बनांदा है, ओदे पांच सत जेड़े पहले खरूफ तुसी पढ़ोगे, पहले पन्ने किते दोक पढ़ोगे, अपनी कालना दा जिक्र करेगा। मैं इन्नी मुशक्कत कीती, इन्ने लोगां नू मिलिया तां पुस्तक तैयार होई, पर मेरे गुरु अर्जुन देव जी ने आरंभता विच किते नहीं कहा कि साडे इन्ने सालां दी कमाई तां गुरु ग्रंथ साहिब तैयार होए, किते नहीं कहा कि असी केड़े केड़े भगतां नू लियांदा। इथों तां गुरु के सिखो जिदन संपूर्णता करदे ने उदन कमाई की गल नहीं करते, उदन कहते ने तुसी करा लिया, मैं एदे जोग नहीं सी, मैं सिर्फ शुक्र करना है तू मेनू एदे जोग बना लिया। गुरमुखो सिखी तां एक है, बाबा जी ने बचन कीते ने अखीरला सलोक असी पढ़ने हां कि तेरा कीता जातो नाही, तेरे कीते नू मैं जानिया ही नहीं, मैनू जोग कीतो ही पाठ है, तेरा कीता जातो नाही, मैनू जोग कीतो ही। क्यों जी तुसी जोग नहीं सी? कहन लगे नहीं, मैं निर्गुण आरे को गुण नाही, मैं अवगुणा नल परियावा, कैसी निर्माणता, मैं निर्गुण आरे को गुण नाही, आपे तरस पयो ही, तुसी तरस दे घर विच आए ते तुसी मेर करके मेरे तो सेवा लै लई, मैं निर्गुण आरे को गुण नाही, आपे तरस पयो ही। ते जिज्ञासु पुछदा सच्चे पातशाह किवें तरस पया? कहन लगे तरस पया में रामत होई, पता की में रामत होई, सतगुर सज्जन मिलिया। गुरमुखो गुरु तो बड़े मिल जाणगे पर गुरु सज्जन कितों नहीं जे मिलना। फिर बेनती समझियो, पूजा कराण वाले गुरु मिलणगे, मथे टिकाण वाले गुरु मिलणगे, पर गुरु सज्जन मिलेगा जेड़ा छाती ठोक के कह सिखा जिथे लेखा मंगया गया तू शब्द नू कमाई जा, तेरे लेखा देन वाली थां ते मैं खलोता हुआ। सज्जन एक हुंदा है, गुरु मिलणगे पर गुरु सज्जन नहीं। वारा वधीक विच हजूर ने एक बचन कहा, नानक दुनिया कैसी कोई, सालक मित ना रहो कोई, भाई बंदी खेत चकाया। इत्थे सालक, सालक दा खरी अर्थ संत हुंदा है, कहिंदे ने ते संत बड़े

एक जीव इस्त्री जा एक जिज्ञासु उस परमात्मा के चरणों में बेनती करता है, मालिक जी वैसाख के महीने रुखां दियां करूंबलां नवियां निकल आईयां ने, उन्हां ने शिंगार कर लिया है पुरातनता नूं त्याग के, मैं अपने तन ते शिंगार कैसा करां ते अपने घर का दरवाजा खोल के तेरी इंतजार पे करनी आ कि तुसी दया दे घर विच आ के मेरे घर विच चरण पाओ। ध्यान दिया जे जल जाना आपां अमृत वाले पासे। पहलियां तुकां सन कि वैसाख भला साखा वेश करे, तन देख है हर द्वार, तन दा अर्थ जीव रूपी इस्त्री, क्योंकि बाणी विच तन दा अर्थ दो तीन आए ने, खास करके तन दा अर्थ हुंदा दौलत, तन दा अर्थ हुंदा इस्त्री, तन दा अर्थ कच्ची दौलत, तन दा अर्थ नाम धन, ते तन दा अर्थ तंता योग भी। मैं संखेप विच अर्ज कर जावां, जदों असीं पढ़ने आ तन फिर ए ना आखिए वैर इकट्ठे होए उथे धन का अर्थ इस्त्री, जदों असीं पढ़ने आ काचा सन धन संचै मूर गावार उथे कच्चे नाल जदों धन शब्द आया उथे धन का अर्थ दौलत, जदों असीं पढ़ने आ ए धन नखुट नान खुटै ना जाए, ए धन अखुट नान खुटै ना जाए उथे धन का अर्थ नाम धन, जदों असीं हजूर दे बचन पढ़ने आ वडियाई गुरमुख दे प्रभ हर पावै सोई, गुरमुख नानक आराध्या सब आखो धन धन धन गुर सोई, उथे धन का अर्थ धनता जो। इत शब्द है कि धन देख है हर द्वार, एक जिज्ञासु जीव अपने दरवाजे ते खलोती इंतजार पे कर दिए ते कह लगे धन देख है हर द्वार, आओ घरे घर आओ प्यारे, फिर दोबारा तुक शुरू हुंदी के प्यारे जी तुसी मेरे घर विच आओ, क्यों दुत्तर तारे जेड़ा दुष्टर संसार तरिया नहीं जांदा ए मेनू तार दियो, ते नाल वचन कीता तुत बिन अड ना मोलो, अड दा अखर अखरी अर्थ इत्थे अद्धा नहीं, अड दा अर्थ करांगे अद्धी कौडी शब्द है, कहन लगे हे प्यारे तेरे तो बिना मेरी अद्धी कौडी भी कीमत नहीं। देखो हुण तुक नूं कदी पढ़िओ, बाबे नानक दा तुखारी वैसे कभी समा मिलिया ना, जिवें तुसी ऐदकी एकाग्रता नाल बड़े टिकान नाल सुने ते चित कीता भी इन्हां शब्दां नूं पढ़ के तुखारी बारह मां दी कथा होनी अत जरूरी। माज ते असीं पढ़ने तुखारी बारह मां नूं पढ़ो, मैं कहना साडा पिछोकड़ साडे बार दे इलाके दा एक एक शब्द जिहड़ा है उह तुखारी बारह मां दे विचों निकलदा पिया। साहिब ने कहा तेरे तो बिना मेरी अद्धी कौटी भी कीमत नहीं। हुण जदों अगली तुक पढ़ने आ कहन लगे मेरे मालिक जी के तुद बिन अग ना मोलो, कीमत कौन करे तुद भावा, हुण अगली तुक के भावे मेरी अद्धी कौडी कीमत नहीं, पर मेरे मालिका जिधर तू मेरा हो गयो उदन दुनिया विच मेरी कोई कीमत पा ही नहीं सकता। पहली तुक विच क्या मेरी कीमत कोई नहीं, तुद बिन अग ना मोलो कीमत कौन करे तुद भावा, जे तेनू पा जावा ते मेरी कोई नहीं कीमत पा सकदा, देख दिखावे ढोलो। हुण ढोला शब्द बड़ा प्यारा है, बाबा फरीद जी ने शब्द वरते हैं, जदों असी पढ़ने हां कि हथ ना लाए कुसंबड़े जल जासी, ढोला ढोला दा अर्थ हुंदा प्यारा देख दिखावे ढोलो। हुण देखो देख दिखावे दो शब्द ने, कहिंदे ने मैं सतगुरु तो कुर्बान जाना, जिन्ने ढोले नूं पहला आप देखिया है ते केवल देखिया नहीं, जिन्हों रब ने इनी ताकत दिती है दूजे नूं भी दिखा सकता है, देख दिखावे ढोलो मेरी कीमत कोई नहीं पा सकता। जे प्यारा परमात्मा मेरे ते नजर कर दे सच जाण्यो कि बंदे दी कोई कीमत नहीं, जे जे गुरु नाल खलो जाए ते इहदी दुनिया विच कीमत कोई पा ही नहीं सकता। ध्यान दिओ बाणी दीआं मैं दो तीन उदाहरणां दे के अगे तुरना चाहना। देखो एक शब्द असीं पढ़ने हां भगत रविदास जी दा, उन्हें प्रमाण दिता है बिहार के इलाके विच अजे भी एक रुख हुंदा उन्हें कहिंदे ताड़ी दा रुख, उस रुख दे विचों जिहड़ा रस चोंदा है उहदा नशा शराब की तरह वह हुंदा है, ते पुराने लोग जिहड़े सन वह ताड़ी दे रुख नूं अपवित्र मानदे ने, चंगा नहीं समझते। बाबा रविदास जी कहिंदे ने मालिक जी हे गुरु गोबिंद सिंह जी
میں خاص کر

शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल सदा सुख मन वसे दुख संसारे खोवे गुर नवनिध दरियाओ जन्म हम कालख धोवे सो कहो टल गुर सेविए एहन सहज सुभाए

करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल सदा सुख मन वसे दुख संसारे खोवे गुर नव निद दरियाओ जन्म हम कालख धोवे सो कहो टल गुर सेविए एहन सहज सुभाए

सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है। गुरु प्यारी परम सन्मान योग सत संगत जी, आप जी वड्डे भागां वाले हो, श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन गोद विच बैठ के अपने जीवन दे कुछ पल सफल बनान दा यतन कर रहे हो, वडभागी हो। आओ जिथे तन करके सतगुर दे चरणां विच हाजरी लवाई है, मन दी हाजरी भी गुरु चरणां विच लवाओ, किते ऐसा ना होवे तन हाजर होवे ते मन गैर हाजर होवे, ते जे मन इत्थे ना होया ते तन दी गैर हाजरी लग जाएगी। आओ जिनी संगत गुरु चरणां विच जुड़ के बैठी है, सारे प्यार सहित गज के फतेह दा जवाब फतेह भी दिओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज धन धन श्री गुरु अंगद देव पातशाह, धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का आगमन पुरब बड़ी श्रद्धा प्रेम ते भावना दे नाल मनाया जा रहा है। भावें यह आगमन पुरब 18 तरीक सी, बुधवार आपां गुरु अंगद देव जी दे इतिहास की विचार कीती सी, ते अज दा दीवान गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे आगमन पुरब नूं समर्पित होएगा। माता महिंदर कौर ते उन्हां दे परिवार ने सतगुरां दे आगमन पुरब मनांदिआं होइआं अखंड पाठ साहिब जी दी सेवा लई ते आप संगतां नूं सद्दा भेजिआ, आप सारे हाजरी भर रहे हो। सब तों पहलां मैं सतगुरां जी दे आगमन पुरब दी आईआं संगतां नूं बहुत बहुत वधाई दिंदा हां। सा धरती भई हरियावली, जिथे मेरा सतगुरु बैठा जाए, से जंत भय हरियावले, जिन्नी मेरा सतगुरु देखिया आए। धन धन पिता, धन धन कुल, धन धन सो जननी, जिन गुर जनिया माए। धन धन गुरु जिन नाम आराध्या, आप तरिया जिनी डिठा, तिना लै छडाए। गुरु अंगद देव पातशाह जी का आगमन मत्ते दी सरां पिता फेरूमल जी दे ग्रह विखे, माता सबराई जिन्हों बहुते इतिहासकारां ने माता दया कौर भी इतिहास विच लिखिया, उन्हां दी कुख तों 1504 ईस्वी दे विच होया। गुरु अंगद देव पातशाह जदों मत्ते दी सरां उजाड़ दित्ती गई, उन्हां दे पिता फेरूमल हरी के पतन आए, हरी के पिंड विच कुछ समा रह के फिर खडूर साहब आ गए। खडूर साहब उन्हां दा व्याह होया सी माता खीवी जी दे नाल, 4 2 पुत्तर ते 2 पुत्रियां सन गुरु अंगद देव जी दियां, इक दा नाम दातू, इक दा नाम दासू, बीबी अमरो ते बीबी अनोखी। पिता देवी दे भगत सन, दुकानदारी किता सी। जदू पिता जी अकाल चलाना कर गए ते ए भी देवी दे भगत बन के
ਭੇਟਾ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚੱਟੀ ਹੈ, ਤੋ ਦਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚ ਕਹੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚ ਸਵਈ ਹੈ, ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਐਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਦੋ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਏਗੀ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ।

सारे रूप दागी ने जो मेरे पढ़न दे चाया चंगी पुत्री नहीं साबत हो सकी। पिता पिटदा ही रहा, आले दुआले दे बुजुर्ग मुखालफत करदे रहे पिता दा दिल तोड़ के और चंगे चंगे बुजुर्गां दी विचारां ते लत मार के उन्हें कदम चुकया चंगी पुत्री नहीं साबत हुई। अगाह चलिए फिर चंगी पत्नी भी नहीं साबत हुई। पति हस्पताल दे बीमार पिया रहा, तलाक हुई, पुछण तक नहीं गई, चंगी पत्नी नहीं साबत हुई। अगाह चलिए जो कुछ मां ते पुत दा झगड़ा मनजर आम ते आंदा रहा उत्थों एक गल स्पष्ट हो गई, चंगी मां भी नहीं साबत हुई। फिर होर मैं अगे चला ते जो मैं देखया चंगी सस भी नहीं जो है साबत हुई। रात नूं 12 बजे नूं नूं घरों कढ़ छड़िया ते फिर चंगी दादी भी नहीं साबत हुई। पोतरा रोंदा ही रह गया, पिटदा ही रह गया। जो चंगी धी नहीं साबत हुई, जो चंगी पत्नी नहीं साबत हुई, जो चंगी मां नहीं साबत हुई, जो चंगी सस नहीं साबत हुई, जो चंगी दादी नहीं साबत हुई, क्षमा करनी वो चंगी राजपाठ की करंदा किस तरह साबत होगी। मनुख दे इना सारे रूपां तो ही अंदाजा लाईदा है कि वाकई ये मनुख की है। कमाल दी गल, जिंदगी दे हर पहलू दे जिस दी जिंदगी दागी होवे ते समुच्चा देश उहदे हत्थां च दे दिता जाए ते देश बर्बाद नहीं होएगा ते होर की है, देश तबाह नहीं होएगा ते होर की है। मैं अर्ज कर रहा सी जैसे अकाल पुरख एक है ते एक होंदे होया उहदे रूप अनेकां ने, उसने ए नियम मनुख दे नाल भी लागू कर दिता है ते मनुख दे भी रूप अनेकां ने। जे पुरुष किसे दा प्यो है, किसे दा पुत्र है, किसे दा पति है, किसे दा पड़ोसी है, किसे दा मित्र है, इसी तरीके नाल ए सारे रूप नारी दे ने। ते चाणक ने, भर्तरी ने और बिदर ने अपने नीति दर्पण विच लिखे है, इन्हां तीन महापुरुषां ने राजा है बिदर नीति दर्पण, ते तीसरा राजयोगी भर्तरी दा जिहदा नां है नीति शतक। ए तिने ग्रंथ राजनीति दिते ने ते तिने महापुरुष इस गल ते जोर देंदे ने कि राज सिंघासन ते जद किसे नूं बिठाओ ते वेख लेना उहदी समाजिक जिंदगी की है। अगर उस समाजिक जिंदगी दे कामयाब नहीं, समाजिक जिंदगी उसकी सारी दाही है, तो सियासी जिंदगी उसकी पवित्र नहीं हो सकती, उसकी पावन नहीं हो सकती, बेदाग नहीं हो सकती। ते इंज लगदा है सदियां दी जिहड़ी इस देश दी गुलामी है ना, उहनां नूं हुण बंदा चुणन दी जाच वी नहीं आंदी। हालांकि चोण दे उत्ते साडे सतगुरां ने ते बड़ा जोर दित्ता, उहनां ने श्री चंद नूं इक पासे कर दित्ता, लक्ष्मी दास नूं इक पासे कीता, चुणिआ ते लैणा चुणिआ। और फिर कमाल कीती गुरु रामदास जी ने, परंपरा ते इह है कि वड्डा ही पुत्तर चुणिआ जांदा, ठुकरा के इक पासे कीता, सब तों छोटे नूं चुणिआ। इह थोड़ी गल नहीं, चोण दे उत्ते गुरुआं ने बहुत वड्डा जोर दिता चोण गलत ना होवे। ते साडे देशवासियां नूं भी अधिकार दिते गए चुणो नुमाइंदा जिहनूं सारा देश सौंपणा है, देश की संपत्ति, देश की असमत और देश की सत्ता हथां च देनी है। पर देखो ते सही, हथ बेदाग ने कि नहीं, हथ पवित्र ने कि नहीं, ये बिल्कुल नहीं सोचा गया। उहदा कारण कि सदियां दी गुलामी ने सोचण दी समर्था ही खो ली है। पता है ये देश कितने साल गुलाम रहा है? आलम लोग ते कहंदे ने ये देश 2000 साल गुलाम रहा है। अफगानिया का गुलाम रहा, ईरानिया का गुलाम रहा, अरबियन लोगों का यह गुलाम रहा। इत्थे मंगोल आए, इत्थे डच आए, इत्थे पुर्तगेज आए, इत्थे फ्रेंच आए, इत्थे अंग्रेज आए, ये सारिया का गुलाम। फ्राइड कहंदा है जेड़ा देश एक दिन लई गुलाम हो जाए ते ओ एक साल पछड़ जांदा है, ओ देश एक साल पछड़ जांदा है। ते जेड़ा देश एक साल लई गुलाम हो जाए ओ एक सदी पछड़ जांदा है।

दाति राजा मानस बपड़ा क्या सलाही क्या तिसका मोहताजा रहा जिन हर ख्याया सब किछ तिसका तिसकी भूख गवाई ऐसा थानु दिया सुखदाता निखुट ना कभी जाए आनंद पया सुख सहज समाने सतगुर मेल मिलाई

बहु करता ज्यों मृतक ओढ़ाया मानुख बिन बुझे व्यर्थ आया अनुख साज सीधार बहु करता ज्यों मृतक ओढ़ाया रहा ताए ताए कृपण श्रम कीनो एकत्र करी है माया दान पुन नहीं संतन सेवा कित ही काज ना आया कारया भरण सवारी सिज्जा कामन थाट बनाया संग ना पायो अपने घरते पेख पेख दुख पाया सारो दिन से मजूरी करता तो मुसला कराया

कह देता हूं कपड़े कुछ नहीं और बेगम कुछ नहीं, ए पनहारी यदि महिमा गायन कर देती, ये चीथड़िया की महिमा गायन कर देती। हूं कबीर दूसरे श्लोक च कहने में सुनो मेरे को, कबीर निरप नारी क्यों निंदी है, मैं सराजे की स्त्री नु क्यों फंडिया, क्यों निंदा की थी, मैं इसनों क्यों फटकारा, क्यों नहीं आख्या। कबीर निरप नारी क्यों निंदी है, क्यों हर चेरी को मान, ये जो हरी दी चेली है, हरी दी पनहारन है, मैं इसनों मान क्यों देता इतना, और उस पर फिटकार क्यों पाई है इतने। कबीर निरप नारी क्यों निंदी है, क्यों हर चेरी को मान, ओ मांग सवारे दिखे को ए सिमरे हरी ना, उदे कीमती कपड़िया हंकार है, वाशना है, ये चीथड़िया प्रभु का नाम है, हरी का नाम है। मैं इन्हों चीथड़िया नमस्कार करता, हरी का नाम है, उत्थे ते हंकार है, नुमाइश है, वाशना है। इसनों भगत कबीर जी इंज कहते हैं, वेद पढ़े पढ़ पंडित मुए रूप देख देख नारी। लोकी किस तरह अपना समा बतीत करते हैं, जिंदगी गवांदे हैं, बस वेद पढ़ते रह गए, वेदां दे विच जो कुछ है वह होने की कोशिश ना की। इन्हों इकबाल कहते हैं, तुझे किताब से फरोग नहीं कि तू किताबे हुआ है, साहिब के किताब नहीं। फिर मैं पंक्तियां थोड़े सामने रखने लगा, फारसी नुमा उर्दू, तुझे किताब से फरोग नहीं के तू किताब हां है, साहिब दे किताब नहीं, तू किताब नू पढ़न वाला है, किताब दे विच जो कुछ है वह तू नहीं है, तू कुरान नू पढ़न वाला है, कुरान विच जो कुछ है वह तू नहीं, तू वेदां नू पढ़न वाला है, वेदों के विच जो कुछ है वह तू नहीं, तू सिर्फ बाणी का पाठ करने वाला है, बाणी जिस दुनिया की गल कर दी है उस दुनिया का वासी तो नहीं, वो तेरे विच नहीं। मुर गए पंडित सिर्फ वेद पढ़ पढ़ के, वेदों विच जो कुछ है वह होने की कोशिश ही ना की। रूप देख देख नारी, दो दफा शब्द वरत्या, रूप पहले अपना देखना, शीशे च बड़ा टाइम जाया करना फिर दिखाना, इसे च स्त्रियां खप गई, कबीर इंज कह रहे हैं, इसे च स्त्री जात खप गई, इसे च स्त्री जात ने अपना समा बर्बाद किया, इसे दे ची अपनी जिंदगी गवाई। रूप देख देख नारी, अपना रूप शीशे च देख देख के फिर जगत नूं दिखा दिखा के जिंदगी बर्बाद की थी स्त्री ने, औरत ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, बड़ा श्रृंगार किया, तन बड़ा संवारिया, कपड़े बड़े सुंदर पहने, गहना गट्टा बहुत, पति है कोई नहीं करते, तो हम पूछ रहे सारा हार श्रृंगार कह दे रही थे, होंगे ही पति ले, इतों ही पता चलता है कि बहुत कुछ दिखाने वास्ते होंगे, दिखाने वास्ते। मैं तो कई दफा ऐसा देखो घर देखते डरावणिया जिया बनिया रहा, पर बाहर निकलन तो पता नहीं आसमान दिया परियां आ जा, मैं कह देना कि घर के बोतलियां बनिया रहा, मतलब है परी होना जगत में दिखाना है, तो पोतनी होना घर के वास्ते, करते वास्ते माफ कर देना, मैं आप ग्रस्ती हाँ, कहो गए गल वधा के की है, पर मैनू यह प्रमाण गुरु अर्जन देव जी ना देंदे फिर इतनी कहण की हिम्मत नहीं सी। बड़ा श्रृंगार किया, बड़े कपड़े पहने, बड़े गहने पहने, पति तो है कोई नहीं, एक तो सुहागन पति है कोई नहीं, दूजा एक होर उदाहरण कबीर देंदे ने, कुआर कन्या जैसे करत सिंगारा, क्यों रलिया माने बाग बता।